विष्माद नाद विष्माद वेद विष्माद जीव विष्माद भेद विष्माद रूप विष्माद रंग विष्माद नागे फिरे जन विष्माद पौन विष्माद पानी विष्माद अग्नि खेड बिडाणी विष्माद धरती विष्माद खानी विष्माद साद लगे प्राणी विष्माद संजोग विष्माद वजोग विष्माद

पर श्रवण सोए सुन निंद बीचा रसना सोई लोभ मीठे साद मन सोया माया बिस्माद

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, सानू अपने ना पवित्र वचना के द्वारा ये दस रहे हैं कि साड़ी जीवन की यात्रा जो है वो सफल क्यों नहीं हो रही, उस दे विच ऑब्स्टैकल्स की हैं। साड़े जीवन की जो विधि है वो किस किस्म की है, तो आओ गुरु बाबा जी के चरणों के विचों पूछिए, महाराज असी अपने जीवन की यात्रा किवें सफल कर सकते हैं, असी अपनी जिंदगी नूं किवें रंगीन बना सकते हैं। तो बाबा जी आखते हैं कि तुहानू तीन चीजा मिलियां, नंबर एक बॉडी माइंड एंड सोल, जो उस दिन शब्द के विच दास ने अर्ज की सी। तो सब तो पहला वह तन नू, शरीर नू जो पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं असी देखते दे हाँ कि ये जो शरीर सी एक वहीकल सी, एक साधन सी, जिस साधन दे नाल, जिस वहीकल दे नाल तुसी अपनी यात्रा जो है उसनु तय करना सी, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बॉडी, जड़ी अजीवात्मा इस दे विच ड्राइवर की तरह बैठा हो। बाबा जी आखते हैं किसी भी यात्रा ते सक्सेसफुली पहुंचने दे वास्ते जो उसका वहीकल है उसका परफेक्ट कंडीशन दे विच होना एब्सोल्यूटली लाजमी है। जे वहीकल बिगड़िया होया है, जे वहीकल रिलायबल नहीं है, तो वो यात्रा जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। महाराज जी साढ़े वहीकल नु की होया, वट इज रोंग विद अवर वहीकल। वो आखते हैं इत्थे बस नहीं, जदों किसे ने किसे वहीकल दे विच अपनी यात्रा करनी होवे तो उसनु अपने वहीकल दा ए टू जी पूरा पता होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। तो गुरु साहब देखते हैं कि सानू अपना ये जो शरीर वहीकल है इसका कुछ भी पता नहीं, बस असी जन्म ले लिया है, शरीर सानू मिल गया है, भुख लगती असी खा लें, नींद आती असी सौ लें, प्यास लगती असी पी लें, बोल चाल लें, होर जो शरीर के फंक्शन हैं असी वो कर लें, पर सानू इस वहीकल का कोई पता नहीं है ये की चीज है, ये की चीज है। तुसी अपनी यात्रा किवें सक्सेसफुली अकम्पलिश करो जदों तुहानू अपने वहीकल के मुतलक ही कोई पता नहीं, एक ही वस्तु की है। नंबर एक दूसरी गल ए है जो साडे जीवन दे विच परमार्थ रूहानियत आत्मिकता स्पिरिचुअलिटी पीस ऑफ माइंड स्टिलनेस स्टिलनेस ऑफ माइंड कामनेस ऑफ माइंड इनर जॉय एंड
ਇਨਰ ਬਲਿਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

काया कमली है चली उन्हां चीजां दे विच खो गई है गुम हो गई है रच गई है जड़ियां चीजां ने इसे नू ही खराब करना है। स्वाद हन इसलिए ही काया दे वास्ते ही डैमेजिंग बन जांदे हन लेकिन काया उन्हां दी एडिक्टेड हो जांदी है इस करके कहिंदे काया कमली। अल्कोहल काया लिए अच्छी है लेकिन काया नू नहीं पता काया उसकी एडिक्टेड हो जाती है जो चीज ने इसे नू ही बर्बाद कर देना है। तो ड्राइवर जो अंदरला है वह बहुत कमजोर है वह काया का गुलाम हो चुका है। काया ने ड्राइवर नू टालिया है काया जो मंगती है वह उसनू प्रोवाइड करी जा रहा है। काया कमली हंस इयाना ते जिड़ा हंस है जिड़ी अंदरली आत्मक जोत है वह कहते हाले बहुत मध्यम है वह न्याणा है वह हाले उस बुजुर्गी नहीं आई क्योंकि उसने बुजुर्गों की महापुरुखों की विचार अपने अंदर ग्रहण नहीं की ना सुनी ना समझी ना विचारी ते उस दे अंदर बुजुर्गी नहीं आई वह इयाना है जिधर काया लाई फिर है उसके पास वह चलिया फिर है। सारी ह्यूमन सोसायटी जी है वह काया के पिछे चल रही है सारी ह्यूमन सोसायटी काया नू ही प्लीज करन दे उते लगी पई है। काया कमली हंस इयाना एक पंक्ति च होर आखदे हन महाराज जी कहिंदे हन

आसा बंदी मूर्ख दे, ए दे बड़ी मूर्ख है, अगां तो अगां दी आसा बंदी जा रही है, पर इस देही नू ए नहीं दिसदा कि मैं बड़े लंबे समय दे फ्यूचर दे वास्ते अपनियां जो आसामा बंदी हां, पर ए नहीं सोचदी कि मैं रहना कदों तक है, कि डे बाय डे मैं ताकतवर होना है कमजोर होना है, डे बाय डे मेरी एज घटनी है या बदनी है, डे बाय डे मेरा एनर्जी लेवल बदना है या घटना है। इस करके एक कंसर्न ही नहीं है, इसका जीव आत्मा इतना न्याणा

है कि वो सोचना नहीं कि दिस इज गोइंग टू बिकम वीकर एंड वीकर एंड वीकर, इसके वास्ते टाइम से इस तो मैं अपना कम लवा, और सगों इस दे नाल रलिया होया है अते काया ये जड़ी बड़ी मूर्ख है। तो यह साड़ी सत्संग की हालत है कि इंद्रियां सबल हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर यह हुण सानूं वरत रही हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर वरत यह रही हैं सानूं। तो कितनी ट्रेजेडी की गल है, कितने अफसोस की गल है। महाराज जी ने ए इंद्रियां सानू दित्तियां सन कि इन्हां दे नाल असी अपना परमार्थ दी जो यात्रा है वह सिद्ध करनी है, सफल करनी है। और फिर महाराज जी पुछदे हन भई ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की कीता है, तू तो सारे दे सारे अपने इस इंस्ट्रूमेंट नू ही डैमेज कर लिया है। पूंडी चाल कहिंदे अखीर जाके बिरध उम्र दे विच जाके तेरी चाल भी नहीं सुनी रह जांदी, डगमगा के तुरदा है, सोटी दे नाल तुरदा है, लंगड़ा के तुरदा है। पूंडी चाल यानी चाल ही अगली हो जांदी, चरण कर खिसरे, हाथ अते पैर ओ खिसक गए हन, ओ कंबदे हन। तुचा देह कुमलानी, जड़ी देही दी तुचा है, जड़ी स्किन है, चमड़ी है, ये ते कुमला गई है, ते झुर्रियां पै गई हैं। फिर असी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा के उसनु असी लिफ्ट देने हैं, अपलिफ्ट कराने हैं। तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद, उन्हां अखियां ने जिन्हां ने ज्ञान पढ़ना सी, साधुआं दे दर्शन करने सन, वो कुछ होर कर दियां रहियां, गुरमुखां दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी पढ़न दा मौका नहीं मिलिया, गुरबाणी पढ़न दा इंटरेस्ट नहीं बनिया, सतपुरखां दे विचार पढ़न दा इसने इस्तेमाल नहीं लिया। हुण कहिंदे नेत्री धुंद, नेत्रां दे विच भी धुंद आ गई है, फॉग आ गई है, क्लीयर दिसदा नहीं। कर्ण पै बहरे, हुण कन्नां तों भी घट सुणदा है। कन्न मिले सन सतसंग सुणन लई, रब दी गल सुन ली, उस पास ते चलन दे वास्ते, वद तो वद इन्फॉर्मेशन सुनन दे वास्ते, पर कहंदे हन हुण ओ भी समां लंघ गया। करन पह बहरे मनमुख नाम न जानी, इस मनमुख ने नाम रूप वस्तु नु कहंदे जिस दे नाल इसने थ्रिल्ड होना सी, फुलफिल्ड होना सी, कंप्लीट होना सी, अकम्पलिश्ड होना सी, सक्सेसफुल होना सी, ओ कहंदे इस मनमुख ने जानी ही नहीं। ता महाराज जी इस इंसान नु कहंदे हन अंदले क्या पाया जगया, ओए अन्ने तू इस जगत दे विच आके की पाया है, की प्राप्त कीता है,

इस दुर्लभ वस्तु तो जल्दी फायदा उठा ला है। वो दिन बड़ा नजदीक आ रहा है जिस दिन ये दुर्लभ वस्तु ते तो वापस ले ली जाएगी। तो सानू गुरमत की जो विद्या है उस दे विच अपने तन दे प्रति हर रोजाना इस उपदेश नू इस सबक नू याद करना चाहिदा है, लिख के सामने रख लेना चाहिदा है कि जेड़ा मेरा तन है ये दुर्लभ है, ये सब तो वड़ी अकाल पुरख की गिफ्ट है, मेरे ये रब दा सब तो कीमती तोहफा है, ये दुर्लभ है। कहते हैं

मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारंबार, जो वन फल पाके पोहेंगरे बहर न लागे डार। जिस तरह दरख्त दे नालों टुट के फल नीचे गिर जाए ते दोबारा और टाणी दे नाल नहीं लगदा, एक दफा ए दुर्लभ तन जो है जदों गिर जाएगा धरती उते, फिर इस दे वापस उठन दी कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई चांस बिल्कुल नहीं है, ये दुर्लभ। सो वी आर कैरिंग समथिंग विच इज सो इनवैल्यूएबल। हाउ वेल्थी वी आर एंड हाउ मच थैंकफुल वी आर, वी नीड टू आस्क दिस टू अवर सेल्फ। दूसरा नुक्ता, नंबर एक दुर्लभ, दूसरा नुक्ता गुरु बाबा जी आखते हैं ये मंदिर है। कद ऐसी सोचा कि मैं ही मंदिर हूं? आप जी ने कितनी दफा ये विचारया सोचा होएगा कि यही मंदिर है। बाबा जी की बाणी दसदी है कि मंदिर की है। जो सोचते विचारते जानते हैं ऐसे गुरमुखां नूं ते मैं नमस्कार करदा हाँ, पर असी बाणी चों तन दे प्रति बॉडी दे प्रति ही इनफॉरमेशन नहीं लई, असी कई दफा बाहरों इनफॉरमेशन इकट्ठी करते फिरते हाँ, जबकि साडे गुरु साहिबान ने इतना भरपूर ज्ञान बख्शिया है सिर्फ बॉडी दे मुतलक ही। अज इत्थे 10 दिन कीर्तन करिए इस चीज दे उत्ते भी, सिर्फ इस चीज दे उत्ते ही, तां भी ओ इनफॉरमेशन जो है ओ कंप्लीट नहीं हो सकेगी कि बाबा जी ने तन दे उत्ते सानू की कुछ दस्या है कि तन की चीज है, पर असी उसनू किसे होर ही फैशन च पढ़ते हैं। सोच विचार के पढ़ना, ज्ञान नाल पढ़ना ओ होर चीज है। आओ दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट महाराज जी दसते हैं ए मंदिर है, टेंपल ऑफ गॉड, दिस इज द रियल टेंपल, इस तो बिना होर कोई टेंपल नहीं। बाणी च किते नहीं आखी, कहिंदे ए मंदिर है, बाणी दा प्रमाण सुन, कहिंदे हन

स्पष्ट है नुक्ता, हर मंदिर ये शरीर है, ये शरीर हरि दा मंदिर है, फिर तो इसमें भी नमस्कार करनी बनती है, फिर तो ये पूजन योग है। जे ये हरि दा मंदिर है, हर मंदिर ये शरीर है, काया महल मंदिर घर हर का हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का एक घर है, अकाल पुरख वाहिगुरु के निवास का स्थान है। तो फिर सानू इस मंदिर नू मंदिर की तरह रखना चाहिए है। मंदिर के अंदर की होंदा है, मंदिर के अंदर शांति होंदी, मंदिर के अंदर पूजा होंदी है, मंदिर के अंदर कीर्ति होंदी है, मंदिर के अंदर रेवरेंस होंदी है। मंदिर के अंदर पवित्रता ही होंदी है, पवित्रता ही होंदी है। मंदिर के अंदर रब्बी संगीत होंदा है, डिवाइन म्यूजिक होंदा है, कीर्तन होंदा है। मंदिर के अंदर संगत होंदी है, साथ संगत होंदी है। अगर ये मंदिर है तो फिर इस मंदिर का जो एनवायरमेंट है वो सारा मंदिर वर्गा ही होना चाहिए है। अगर ये मंदिर है तो इसके अंदर शांति होनी चाहिए है, टिकाव होना चाहिए है, इसके अंदर हर वक्त पूजा आराधना होनी चाहिए है, इसके अंदर सत्संग होना चाहिए है। मंदिर च प्रभु जी का निवास होंदा है, गुरुदेव होंदे हन, इस मंदिर दे विच भी हर वेले गुरुदेव की प्रेजेंस महसूस होनी चाहिए है। मंदिर दी असी कदे बेअदबी नहीं करते, उपर असी जोड़ा पा के नहीं आ सकते क्योंकि बेअदबी हो जाएगी। फिर इस मंदिर की भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मंदिर की बेअदबी बड़ा वड्डा गुनाह है। इस मंदिर की जो कि इट्टा नाल लकड़ियां नाल पत्थरां नाल बनिया है, असी कितने कंसर्न हाँ कि बेअदबी ना होवे, पर इस मंदिर की बेअदबी जितनी मर्जी हो जाए उस दे वास्ते असी कदे कंसर्न नहीं है। सर्टन थिंग्स तुहानू पता है कि असी इस मंदिर च नहीं लिया सकते, खाण वालियां पीण वालियां इस मंदिर च असी नहीं लिया सकते, ना असी इत्थे कुक कर सकते, ना बना सकते हैं, ना वरता सकते हैं। अगर लै आइए बनाइए खाइए पीए तो इत्थे झगड़ा हो जाएगा, पर वो वस्तुआं इस मंदिर च असी किवें लै जाने हैं जिसनू महाराजी मंदिर आखते हैं। इस मंदिर च असी वो तमाम चीजा ता ही ले जाने हाँ कि सानू ये ज्ञान ही नहीं मिलिया गुरु बाबा जी की बाणी तो हाले तक कि असल मंदिर इंसान आ तेरा शरीर है। इस मंदिर दे अंदर ओ ही कुछ ले जा जो जान दे योग है। इस मंदिर दे विच कोई भी ऐसी वस्तु पाई जो योग नहीं है, बहुत वड्डा गुनाह अते बहुत वड्डा पाप हो जाएगा। इस मंदिर नू पवित्र तो वध के पवित्र रख। इस मंदिर दे अंदर दा वातावरण जो है वो पवित्रताई वाला रख। पर साडे अंदर की है, बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू जुक्त बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म। असी तो ये कुछ पाई बैठे हाँ तो मंदिर की कितनी वड्डी असी बेअदबी कर रहे हैं। तन दे मतलब जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, व्हीकल है, पर इस

जब इश्क निवास चली थी, इश्क दिन प्यार जब इश्क निवास चली थी, या की मंदिर ते की बसी थी।

जब इश्क निवास चली थी, इश्क प्यार जब इश्क निवास चली थी, की मंदिर ते की मस्जिदी, फिर चीजें की कोई कमी नहीं। हकीकत तो प्यार है, ये प्यार नहीं तो मंदिर ची कट्टी उजाड़ का कोई ना, मस्जिद भी मथे टेकने का कोई ना। हकीकत प्यार तो भुले शाह लिखता है, जब इश्क निमाज से गीती क्या मंदिर ते क्या मसीती, फिर जब यार ने आन दीदार दिता, यार को वाहि धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उस अकाल पुरख नु अपना यार के सुन, यार हमारे सच यार कहते प्यारी जेदे नाल बहुता प्यार, ते फलाना आदमी हो मेरा यार है। सब तो श्रोमणी प्यार करने वाले धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी अकाल पुरख नु यार कहते। तो खुदा लिखता है, जब यार ने आन दीदार दिता, इश्क का सिजदा कीता, यार सामने आके खड़ो गया, फिर होया कि बुले ने कमाल कीता, कहता है जब यार ने आन दीदार दिता, गल दसनी नहीं जड़ी बीती, वो दसन वाली चीज, ये कोई दसदा फिरदा है तो गलत। बाबा जी बचन करते कई ऐसे लोग, मैं तुहानू रब मिला देना, मैं रब हां नरम खार, बाबा जी बचन करते सन झूठ को जिथे मैं उथे तो रब होता ही नहीं। हाँ खुश मैं तो बिछोड़ा है, क्यों भाई जे तू कहता है तो मैं निरंकार मिला देना, मैं निरंकार। हजूर कहते सो अजान कहे मैं जाना, जेड़ा कहता मैं जानी, मेरी बड़ी बिरती लगती कुछ नहीं, वो तो अनजान ओने गुरमत नु समझे ही। सो अजान कहे मैं जाना, जान हार ना छाना। किसी महात्मा ने बाबा धन सिंह जी महाराज के बेनती की, बाबा जी मैं सुनया तुहानू धन गुरु नानक पातशाह जी ने साख्यात दर्शन होते हैं,

तू नहीं, अब तू ही है, जिथे तू ना प्रकाश हो जाएगा उथे मैं ही। बाबा जी ने फिर पीता की पता होते ही हो, महाराज मैनू भी दर्शन कराओ। बाबा जी सचखंड में लै गए सामने श्री गुरु साहब का प्रकाश की लोमा पुछो आ गुरु नानक बैठे। मैनू नहीं दिसता, बाबा जी कह लगे पढ़ाई तो बगैर कोई चीज नहीं मिलती। आखो जितने तक पढ़ाई ना पढ़ी, बच्चा जे पढ़ाई पढ़ेगा तो आलम बनेगा। अखा वो ही है पर हूं इलम बड़ा चंगा लग रहा है, उसने मास्टर की संगत तो गुरमुख की पढ़ाई पढ़ के असी वो पढ़ते नहीं हाँ, नितनेम करते नहीं, बाणी नाल जुड़ते नहीं। जी मेरू दर्शन बाबा जी ने प्रश्न किया साक्षात गुरु बैठे महापुरुष हो, पर यह नहीं कहना दर्शन होते मैं ते तू दा मेल और गल दसनी नहीं जड़ी पीती। ये दर्शन ही ऐसे, ये दर्शन दर्शन पेखत मैं जीरो, दर्शन देख जीवा गुर तेरा। अज उन्हां दर्शनां नूं सेठ गंगा राम उड़ीकदा पे केड़े दर्शन प्यार नाल आखो धन श्री गुरु अमरदास। तीजा गुरु कद समाएगा मेरे मन दी च, काफी समा हो गया रात दिन सात संगत दे भांडे जूठे बजी गए, कितना समा हो गया 6 महीने हो गए। प्यारी सात संगत जे किसी वेले मन डोलदा है तो आसरा यही करेगा।

तारियां मार के सत्संग रूपी मान सरोवर च बैठ आप जी धन गुरु अमरदास पातशाह जी की बख्शिश प्राप्त आज पूर्णमासी की रात बख्शिश वाली रात गंगाराम से कितनी रहम सोचांगे गंगाराम ने भूल की थी और गंगाराम ने तो एक बार की थी असी रोज कर जाते और दूजे पासे माया जितनी लग जाए गुरु और संकोच कर पर नहीं माया तो वही साड़ी है जिड़ी चंगे पासे गुरु वाले साईं तुलसीदास जी ने लिखा माया है दो भाज की दो चलावे राह एक ले जावे नरक को एक शराबा के बाबे च माया ला दो नरका का बुआ खुल जाए गुरु दे लेखे ला दो गुरु नरक नाल जोड़ दो तुसी जिथे तन मन नाल आके जुड़े अपने तन नू भी पवित्र दर्शन पे शब्द दीते शब्द गुरु का रूप है बाबा जी बचन कर दे सर ना लेके अरदास करने की लोड़ ही बेनती की थी बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कह लगे ना लेके अरदास तू किसे नू की दे सकदा ये तो शब्द वाला ही प्यार वाले दे मन प्रेरदा मानो शब्द वाला ही सिख दे हिरदे ते बह के आप प्रेरदा है आप शब्द का आदर कराउंदा है ते बाबा जी कहन लगे फिर बख्शिश गुरु आप ही कर तो आप जी समा एक दिन ने दो दिन ने कुछ दिन तो आप निकले हिस्सा अमृत वेले भी आके जुड़ते हो जिस प्रोग्राम नो कदे बना रहे सन बरपुरदार सरदार गुरचरण सिंह जी बीबा हरबंश सरदार करनैल सिंह जी सरदार हकम सिंह जी और सारे गुरुद्वारे दे प्रबंधक आई साहब कदों आ रहे हो प्रोग्राम बने अधिक दिन अपनाए प्रोग्राम सार दास पहुंच गए मार्ग दे दर ते हाजरियां भर रहे हैं हम बाकी दो ही दिन विच रह गए कल तक परसों सेवका ने अगले प्रोग्राम से चला जाना फिर नदी नाम से इतने साल 50 साल हो गए कीर्तन कर दे पहली बारी इस तरह के दर्शन हुए गुरुखां के दर्शन ताके पीछे हुए अरे सस्तान आओ जो अगला प्रोग्राम है आप जी का निकनेम है अखंड पाठ भी है कीर्तन भी है वो प्रोग्राम जिस तरह आप जी ने बनाया है संगत च अनाउंस कर दो ताजो आने वाले प्रोग्राम जी आप इसे तरह जुड़ के गुरु की खुशियां प्राप्त कर सको और गुरु अमरदास पातशाह आप जी की महान महान बख्शिश द्वारा आप जी दे दरों करो वरसाए होए गुरसिख माई पाई पातशाह आप जी की दिती हुई दात सफल करते हुए शब्द गुरु का सत्कार करते कीर्त करते कौन अरदास कराते हैं आप अपने गुरसिखा दिया कमाइया च बरकता पाओ आप अपने गुरसिखा सिखी जीवन बच्चे बच्चिया चढ़दिया कला करो।

जितने भी इसके छिद्र हन, छेक हन, होल्स हन शरीर दे, उना दे विच्चों अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है। कन चो, अखियां चो, नासकां चो, मुंह चो की निकलता है, अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है। शुद्ध नहीं है, शुद्ध इसने सिर्फ अपने अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरु नु प्रगट करके ही होना सी, उस तो बिना यह शुद्ध नहीं है। सूची काया हर गुण गाया, हरी दे गुण गाउन नाल ही एक काया सुची हो सकती है, वरना यह सुची नहीं हो सकती। कहंदे ए नापाक है, किथे मंदिर, किथे इसनु मंदिर वर्गी बना देना सी, ते किथे इसनु नापाक आख्या है, अपवित्र है। तीसरा नुक्ता, गुरु साहब आखदे हन ए डरौनी है, एक आया कहंदे

अगर इसने मंदिर नहीं बनाया तो जदों इस दे विच्चों रूह निकल जाएगी, कहिंदे यही दुर्लभ डरौनी लगेगी, इसके नजदीक खड़ना मुश्किल हो जाएगा, खड़दियां डर लगेगा, यह डरौनी बन जाएगी। फिर आखते हैं

अगर इस काया दे अंदर ए पोटेंशियल है कि ए काया नू बनाउन वाले नू ए बुझ सकती है, रियलाइज कर सकती है, उस दे विच इमर्ज कर सकती है, उसनू समझ सकती है, तो कहिंदे अगर उसनू नहीं ए समझदी ते ए पशु तो प्रेत तो मुगत तो भी बुरी है, प्रेत तो भी बुरी है, पशु तो भी बुरी है। चौथा नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन एक काया कमली है, मूर्ख है, कहिंदे हन

0: फिर आखते हम ये मूर्ख है,
1: आसा बंदी मूर्ख दे
0: आसा बंदी आशामा बनी फिरती है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है। इस मूर्ख नु ए भी नहीं पता कि हो सकता कल दा दिन तेरा अखीरला दिन होवे, कल दी रात तेरी आखिरी रात होवे, अखीरला श्वास तेरा नेक्स्ट ही होवे, हो सकता आ साल तेरा अखीरला साल होवे। पर ए आशामा बंदी है बड़िया लंबिया लंबिया, कई बंदे कितनी उन्हां दी उम्र हो जाएगी फिर भी आखणगे हाले असी जदों सैटल हो गए तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सैटल पता नहीं कदों होणगे, हो सो कई लोग सारी उम्र सैटल ही नहीं होंगे, देन दे फाइनली सैटल इन द ग्रेव, फिर सैटल हो जाए। गुरु महाराज जी आखदे हैं ये मूर्ख है क्योंकि इसने अपनियां गलत आदतां बना लईयां हैं, एडिक्शंस बना लईयां हैं, सुभा बना लए हैं, अते उन्हां चीजां नूं वरतदी है जिहड़ियां चीजां इस नूं कमजोर कर दियां हैं। तो कहिंदे ये मूर्ख भी है।

अगली गल पंजवन गुरु बाबा जी आखते हैं अगर एक आया मंदिर ना बनी सरोवर ना बनी तो यह फिर दुखां दा घर है या तो यह रब दा घर है नहीं तो फिर यह दुखां दा घर है क्योंकि इस दे विच इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं जो जो कमजोरी आंदी है बुढ़ेपा आंदा है इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं कि इंसान फिर उन्हां दियां दर्दां दे नाल घुलदा घुलदा इस दुनिया दे विचों जांदा है। सब तो ज्यादा पेन जो है इंसान में फिर एक काया दी सर्जरी हुंदियां हैं की कुछ हुंदा है कहिंदे हन इह शरीर ही फिर साडा एनिमी बनदा है। बड़ी कमाल दी गल महाराज ने बाण च लिखी है कि इह शरीर ही अगर नाम नहीं जपया फिर साडा एनिमी बनदा है साडा विरोधी बनदा है। बाण च आखदे हन इस तरह कहिंदे हन

जितने तेरा शरीर के तेते लगे दुख उतने ही ज्यादा दुख लगे, उतने ही ज्यादा मुश्किल दे विच पै। तो पंजवा नुक्ता यह है कि अगर यह सरोवर ना बनिया, अगर इसनु असी दुर्लभ ना बनाया, अगर इसनु रब दी सजाई हुई दुल्हन ना बनाया, तो इसने तुहानू दुखी भी बहुत करना है, बहुत दुखी करना है। और उस दुख दे विच कोई साथ नहीं दे सकता, उसनु कोई शेयर नहीं कर सकता, वो दुख तुहानू खुद अपने आप चलना पैना। ए दुख दा घर है। अगला नुक्ता छेवां, गुरु महाराज जी इत्थे छेवें नुक्ते दे विच ते बहुत ही चोट वाली गल करदे हन। कहिंदे हन ए वेस्ट गया है, निष्फल गया है, व्यर्थ गया है। अते आखदे हन पंक्ति दे विच

सगल शरीर आवत समकान, बाकी सारे ही शरीर जड़े हैं वो मरण तो बाद काम आते हैं। किसी की स्किन काम आती है, किसी दी बोन्स काम आती हैं, कईयां दी दवाइयां बनदियां हैं, कईयां दी स्किन साडे उत्ते पहनन दे योग हुंदी है, असीं पहन लैने हाँ। लेकिन इंसान दी स्किन उतार के पहन के देखो, मरे हुए इंसान दी स्किन नू उतार के पहन के देखो, पहनी जा सकती है। कहिंदे सगल शरीर आवत सब काम, सारे शरीर किसे ना किसे काम आ जांदे हन मरन तो बाद। ईवन सप वर्गा जहरीला जानवर भी, उसकी स्किन भी काम आती। लेकिन इंसान दा शरीर ऐसा है जरा किसे काम नहीं आता। निफल मानुख, ये मानुख दा शरीर जरा बिल्कुल निष्फल जाता है। बस एक ही काम इसने करना सी, नाम जपन दा। अगर ओ ने कीता तो कहने निफल मानुख जपे नहीं नाम, ये बिल्कुल निष्फल हो गया। तो इसके सारे गुण जो हैं वो गल गए। एक दफा इस पंक्ति में सुनो अते नाले अपने अपने अंदर इसनों रिफ्लेक्ट करो अते सोचो कि ये सच है, ये सही है, कि मैं इसके नाल सहमत हाँ, कि मेरी जिंदगी ही ते नहीं अजही, कि मेरी ही जिंदगी अजही ते नहीं। ऐ जो शब्द वर्त्या है, त्रिक त्रिक खाया, त्रिक त्रिक सोया, त्रिक त्रिक कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिक शरीर कुटुंब सहत से, किते मेरा खाना पीना ही उसदे त्रिकता नहीं है, त्रिकारता नहीं है। किते मैं अपनी इस मंदिर वर्गी काया नू ऐथे तो नहीं पहुंचा बैठा हूं, तो फिर मैं किस तरह सिर उच्चा उठा के चलांगा, किस तरह अपने आप नू इंसान समझांगा, किस तरह मैं दूसरों के वल उंगली उठावा।

हर बिसरत तेरे गुण गलिया। तू दुर्लभ सी, तू मंदर सी, तू रब दी सुहागण सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं। सुनो किमें गले हैं, कहते हैं

सो अंत सो बहर अनंत कटकट व्याप रिहा भगवंत तन महे आकाश प्यार सर्वलोक।